हैं और इस रास्ते से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप चोटियों से इन शानदार कूफों को देखना चाहते हों, शायद साहिल पर डेरे डालना चाहते हों। हो सकता है कि आप कदीम खंडरात के दरमियान घूमना पसंद करें। हो सकता है कि आप जंगल में थाइम की खुशबुओं के दरमियान रहना चाहते हों। इंतखाब आपका है। लिकियन वे दरअसल रोमन दौर में शहरों को मिलाने वाली आज़ाद सड़कों का एक सिलसिला है। तुर्की का पहला तवील पैदल चलने वाला रास्ता रोमन सड़कों और उस दौर के पुराने रास्तों के निशानात पर अमल करते हुए बनाया गया था। हर साल तकरीबन 30,000 लोग इस सड़क पर चलते हैं। यकीनन ये सब नहीं, क्योंकि 550 किलोमीटर की पूरी सड़क को एक साथ चलने के लिए अच्छी कंडीशनिंग और औसतन 25 से 40 दिन की ज़रूरत होती है। अगर आप तजुर्बाकार हाइकर नहीं हैं तो कई दिनों के रास्तों का इंतखाब करने की सिफारिश की जाती है। लेकिन वे को बैन अलाक्वामी मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए निशान जद किया गया है ताकि पटरियों को आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। चौराहों पर लगाए गए पीले रंग के निशानात और रास्तों और कच्ची सड़कों पर सुर्ख और सफ़ेद लकीरें चलने वालों की मदद करती हैं। लेकिन वे पर गर्मियों के अलावा तमाम मौसमों में पैदल चलाया जा सकता है, क्योंकि बहिरा रूम की आबो हवा मुतदल है। इस कारोबार के माहरीन का कहना है कि बारिश पर तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश से ज़मीन फिसल जाती है, चीज़ों को चढ़ने और उतरने में कदरें मुश्किल पेश आती हैं। लेकिन वे दुनिया के तवील तरीन और 10 बेहतरीन हाइकिंग ट्रेल्स में से एक है। जैसा कि आप इस सड़क पर चलते रहेंगे, आप मारूफ कदीम शहरों के साथ साथ उन शहरों पर भी जाएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ बहुत अच्छी हालत में हैं, सिर्फ दूसरों के खंडरात ही बच गए हैं। डूबा हुआ शहर अपर लाई और इसके खंडरात मायरा में पत्थर के मुनफरिद मकबरे, जहाँ सेंता क्लॉज की मौत हुई थी, और शहर की कदीम बंदरगाह एंड्रिया के फिलो से लेस है। सिमेना सारकोफागी अपने खंडरात के साथ आधा पानी में और आधा बाहर, और यकीनन यूनेस्को की दुनिया वरसे की फहरिस्त में शामिल जानथोस और लिटून के खंडरात सिर्फ कुछ कदीम शहर हैं जो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन वे पर उन लोगों के लिए मुतासर कुन इख्तियारात हैं जो न सिर्फ पैदल चलना चाहते हैं बल्कि तैराकी या धूप में भी जाना चाहते हैं। जादुई बहिराए मुर्दार, मुनफरिद कुबुक बे, पतारा बीच दुनिया के सबसे तवील कुदरती साहिलों में से एक, जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर है, पोशीदा जन्नत और एसन बे, और बहुत से अछूते खुदे। जो लोग पहाड़ों और ऊंचाइयों के शौकीन हैं, वो तुर्की के साहिल के करीब बुलंद तरीन पहाड़ ताख्तली, जिसे ओलंपस माउंट और सूजुस माउंट भी कहा जाता है, पर चढ़ सकते हैं, जहां दुनिया के चंद देवदार के जंगलात वाक़े हैं और चोटियों और चट्टानों के जोशो खरोश का तजुर्बा भी आप वहां कर सकते हैं। ताशलिक पॉइंट पर तुर्की का सबसे खूबसूरत लाइट हाउस गैलिडोनिया देलिक कमर, कदीम ज़माने का इंजीनियरिंग का मुजज़ा उलूबुरुन, दुनिया का सबसे पुराना जहाज का मलबा यानार ताश कमेरा, इन हैरतों में से हैं जिनका आपको रास्ते में सामना होगा। सामिन लीकियन वे एक लंबी सड़क है जो नीले और सब्ज के दरमियान एक बसरी दावत पेश करती है, जिसमें पहाड़ों और समंदर के किनारे दोनों से दिलकश नज़ारे होते हैं। इस सड़क पर चलते हुए जहां आप इन शहरों को देखेंगे जिन्होंने तारीख का पहला जमहूरी इत्तेहाद कायम किया, वो शानदार फितरत आपकी होगी और आप इस फितरत का हिस्सा होंगे। नस्ली खान देरमैन जी ओलू के कलम से तहरीर करदा ये प्रोग्राम आपने सुना। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: उन्होंने कहा है कि अफवाज ने हथियारों के डिपो, बारूद से भरी किश्तियों को जखीरा करने वाली सहूलियात और बहरी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अल मालिकी ने मजीद कहा है कि इस ऑपरेशन ने कामयाबी से जनूबी बहरा अमर में बहरी गुजरगाहों को निशाना बनाने वाले हमलों की साजिश नाकाम बना दी है। यमनी फौज ने हूसियों के जेर कब्जा दारुलहुकूमत सना को दोबारा हासिल करने के लिए एक बड़े हमले का ऐलान किया है, जिसके तहत 1,000 से ज्यादा हमले किए गए, जबकि इतिहादी फौज ने तस्दीक की है कि 100 जंगी तैयारों ने मुल्क भर में अलग सुबह परवाजें की। बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने इतवार के रोज एक जाम हदफ का ऐलान किया, जिसके तहत हूसियों के जेर इंतजाम तमाम इलाकों को वापस लिया जाएगा जहां यमन की अक्सरियती आबादी रहती है। एक हंगामे बयान में हूसी अफवाज ने सऊदी अरब के अंदर अहम बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमलों का दावा किया है। ग्रुप का कहना है कि इसने रियाज एयरपोर्ट, राबेग में अरामको ऑयल रिफाइनरी, अबहा एयरपोर्ट, खमीस मशीद एयरबेस, नजरान और असीर में अकफा फौजी कैंप को निशाना बनाते हुए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं।
1: यमन के मुसल्ला फौज ने बाब अलमंदब के करीब अहम तस्वीराती मकामात का कंट्रोल संभाल लिया है। यमनी फौज ने ऐलान किया है कि हुकूमती अफवाज ने हूसियों के साथ झड़पों के बाद ज़िला ज़ुबाब और आबनाए बाब अलमंदब के करीब वाक़ तस्वीराती फौजी मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। खबर रसाई एजेंसी सबा के मुताबिक नेशंस शील्ड और जनूबी मुश्तरका ब्रिगेड्स ने अवामी मुज़ाहमत की हिमायत से ताज़ गवर्नरी के मगरबी हिस्से में वाक़ ज़ुबाब पर कब्ज़ा कर लिया है। फोर्सेज ने अहम फौजी मकामात पर कब्जा करके हूसियों की बाब अलमंदब तक पहुंचने वाली रसदी लाइनें मुनक़ता कर दी हैं। झड़पों में हूसियों के नामालूम तादाद में अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं और फौजी गाड़ियों और साजो सामान को भी तबाह या नाकारा कर दिया गया है।
0: इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे पर हमलों में 8 फलस्तीनियों को जख्मी कर दिया है। फलस्तीन के सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों और इसराइली फोर्सेस की जानब से किए गए हमलों की एक लहर में कम अज़ कम 8 फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। हमला आवरों ने औरतों और बच्चों समेत इलाके की रहायशियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। गैर कानूनी आबादकारों और इनके हमरा मौजूद इसराइली फौजियों ने मुतअद्दिद घरों और मवेशियों के बाड़ों को भी लगा दी। फलस्तीन की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाल में वाके कलकीलिया के गांव अमातीन में गैर कानूनी आबादकारों ने लाठियों और पत्थरों से हमला करके 4 फलस्तीनियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया।
1: इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने दावा किया है कि उसे हमास के गजा में काबिज इसराइली फौजियों पर हमले की तैयारियों में होने की खुफिया इत्तला मौसूल हुई है। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक काज ने कहा है कि उसने इसराइली फ़ौज को किसी भी मुमकिन बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। काज ने धमकी दी है कि किसी भी हमले की सूरत में गजा के आवाम को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाज रहे कि जैसे जैसे इसराइल में 27 अक्टूबर को मुतवक्का इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इसराइली ज़राए अबलाग इस इम्कान की जानब इशारा करना शुरू हो गए हैं कि तेल अवीव हुकूमत गजा और लुबनान पर हमलों में इजाफे के साथ साथ ईरान पर भी हमले कर सकती है। रोजनामा इसराइल हुयूम की खबर के मुताबिक इसराइल अमरीका की शमूलियत के बगैर ईरान पर एक नए हमले की तैयारी कर रहा है।
0: CIA ने खबरदार किया है कि गहरी होती अंदरूनी तकसीम इसराइल को खाना जंगी के खतरे से दोचार कर रही है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे की एक खुफिया जायजा रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि गहरी होती सियासी, इक्तसादी और समाजी तकसीम इसराइल को खाना जंगी या रियासती खात्मे के खतरे से दोचार कर सकती है। अंदरूनी तकसीम के उनवान से जारी किया गया यह तज्जिया CIA के रेड सेल ने अगस्त में तैयार किया था। जायजे में इस बात की निशानदेही की गई है कि 27 अक्टूबर को मतवको पार्लिमानी इंतखाबात से कबल मुल्क को दरपेश अंदरूनी दबाव एक गैर मुस्तहकम अंदाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कशीदगी के अहम अवामल में मईशत में शदीद सकड़ाव, दिफाई अखराजात में तेजी से इजाफा, मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों के तशद्दुद में इजाफा और इंतहाई कदामत पसंद यहूदी मर्दों को लाजमी फौजी सर्विस से मुस्तस्ना रखने के खिलाफ माशरे में पाई जाने वाली शदीद मुखालफत शामिल हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने 7 अक्टूबर के तीसरी बरसे से कबल गुफ्तगू करते हुए गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया है। गुतरेस ने एक सरकारी बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है कि जंग बंदी को मुस्तकिल किया जाए, अब वक्त आ गया है कि बड़े पैमाने पर इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए और अब वक्त आ गया है कि बैन अवी कानून का एहतराम किया जाए। उन्होंने आलमी बरदरी पर जोर दिया कि वह पूरे खत्े में पायदार अमन के लिए एक सियासी रास्ता तलाश करें।

0: गुटरेस ने इस बात पर जोर दिया कि यह बरसी सिर्फ सोग मनाने से बढ़कर होनी चाहिए। इस बरसी को ना सिर्फ सोग का एक और साल करार दिया जाए बल्कि एक मुख्तलिफ मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक नए अज़्म का निशान भी बनाया जाए, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें इसराइली और फिलिस्तीनी अमन व सलामती के साथ अपने हकूक, वक़ार और उमंगों की तकमील के साथ शाना बशाना रह सकें। गुटरेस ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की है, उनके मसायब का भी अब खात्मा होना चाहिए। इस महसूर इलाके में इसराइल की बरसों पर मुहित नस्लकुशी की जंग में 74,200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गुटरेस ने एतराफ़ किया कि अक्टूबर 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में होने वाली आर्जी जंगबंदी से महदूद रिलीफ मिला, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि ये अभी तक सिक्योरिटी, मुनासिब इंसानी इमदाद या बहाली और अमन का कोई मोतबर रास्ता फराहम करने में नाकाम रही है।
1: पेंटागन ने फोर्ट हुड के हमला आवर नदाल मालक हसन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए सजाई मौत देने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने पीर के रोज जारी करता बयान में कहा है कि अमरीकी हुकूमत ने फोर्ट हुड हमले में मुजरिम करार दिए गए नदाल मलिक हसन को फौजी फायरिंग स्क्वाड के जरिए गोली मारकर सजाए मौत देने की मंजूरी दी है। पेंटागन के तर्जुमान शान पार्नेल ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर दिफा पैट हेक्स की तजवीज करदा सजाए मौत की मंजूरी दी है। सजाए मौत की तारीख और मुकाम का तायुन बरी फौज के वजीर करेंगे। वाजह रहे कि साबिक फौजी माहिर नफ्सियात और मेजर हसन ने 5 नवंबर 2009 को टेक्सास में वाक़ फोर्ट हुड फौजी अड्डे में फायरिंग की, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 32 जख्मी हो गए थे।
0: अमरीका में एक वफाकी जज ने तारकीन वतन पर आयद भारी जुर्मानों का निफाज रोक दिया है। इत्तला के मुताबिक बॉस्टन के ज़िले जज जॉर्ज ओटूल ने मुलपदरी के हतमी अकदाम के बावजूद अमरीका तर्क न करने वाले तारकीन वतन पर $18,00,000 तक के इंतजामी जुर्माने के निफाज की कोशिशें रोक दी हैं। जज ने इन जुर्मानों को गैर कानूनी तरीके से आयद किए गए जुर्माने करार दिया है। ओटूल ने यह फैसला गुज़िश्ता साल इमिग्रेंट लीगल रिसोर्स सेंटर की जानिब से दायर की गई एक इज्तिमाई दरख्वास्त पर सुनाया है। मुकदमे में उन हज़ारों अफराद में से 2 तारकीन वतन भी शामिल थे जिन पर वजारत दाखिला सलामती ने जुर्माने आयद किए थे। ओटूल ने इस बात की निशानदेही की कि ये जुर्माने दरख्वास्त गुजारों को अचानक माली तबाही से दो चार कर सकते हैं, लिहाजा इन इकदाम को रोकना इंतहाई ज़रूरी है।
1: अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पीर की शब आइसलैंड पहुंचे ताकि ग्रीनलैंड से मुतलिक वाशिंगटन के एक माहदे के बाद कुतुब शुमाली में अमरीकी असर रसूख को बढ़ाने के लिए 3 यूरोपीय ममालिक का दौरा शुरू कर सकें। अमरीका वजारत ख़ारजा ने इस दौरे का ऐलान करते हुए एक बयान में कहा है कि रूबियो रिकशाविक में हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि इकतसादी और सिक्योरिटी तआवुन पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये बर्क रफ्तार दौरा जो जितना सियासी है इतना ही अलामती भी है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हाशिए पर सितंबर के आखिर में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ अमरीका के एक सिक्योरिटी माहदे पर दस्तखत करने के बाद हो रहा है। इस माहदे ने बज़ाहर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ग्रीनलैंड को खरीदने या अपने साथ जम करने की धमकियों का खात्मा कर दिया है। रवानगी से कबल रूबियो ने आइसलैंड को अमरीका का एक अच्छा दोस्त करार दिया है।
0: सदर ईरान मसूद पेजिशकियान ने आर्मीनिया के वजीर खारजा अरारात मेरजुयान के साथ मुलाकात में कहा कि मुस्तकिल पाबंदियाँ आयद करने वाले, कत्ल करने व माहिदा खिलाफ वर्जियाँ करने वाले दुश्मन के साथ मुजाकरात करना कोई मायने नहीं रखता। ईरान सदर के अलामिया के मुताबिक पेजिशकियान और मेरजुयान ने दारुलहुकूमत तहरान में मुलाकात की। पेजिशकियान ने मुलाकात के दौरान कहा कि अमरीका के साथ मुश्किल ये है कि जब भी हम मेज़ पर बैठते हैं हमारे सर पर जंग थोप दी जाती है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन इंतजामिया ने मुज़ाकरात के दौरान 3 मरतबा उनके मुल्क पर हमला किया और इससे जाहिर होता है कि अमरीका गुफ्तगू नहीं बल्कि ईरान को तबाह करने का इरादा रखता है। पेजिशकियान ने कहा कि उनके मुल्क ने एटमी सरगर्मियों के बारे में अपनी दयानतदारी कई बार साबित की है। ईरान बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तरफ से सबसे ज़्यादा मुआयना किया जाने वाला मुल्क है, इसके बावजूद अमरीका बेबुनियाद दावों के जरिए ईरान पर दबाव डालता है। उन्होंने मजीद कहा कि वह अक़वामे मुत्तहिदा के फोरम से एटमी सरगर्मियों के बारे में निगरानी और बातचीत के लिए खुले होने का इजहार कर चुके हैं, मगर हर मुआयने के दौरान ईरान के एटमी मराकज और साइंसदानों की निशानदही करके उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है।
1: रूसी हुकाम ने इत्तला दी है कि एक वसी पैमाने के ड्रोन हमले के जिसमें 650 ड्रोन शामिल थे ने रात भर मास्को और इसके अतराफ के इलाके को निशाना बनाया, जिस दौरान एक शख्स हलाक हो गया है। इलाके के गवर्नर एंद्री वोरबियोफ ने कहा है कि एक 20 साल नौजवान मास्को के एक मजाफाती गांव में हलाक हुआ जबकि एक कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। खबर रसाई एजेंसी रिया यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट किया है कि 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रियासती खबर रसाई एजेंसी तास ने इस हमले को गुज़श्ता 2 सालों में मास्को और इसके अतराफ पर होने वाले दूसरे सबसे बड़े ड्रोन हमले के तौर पर बयान किया है। रूस और यूक्रेन ने हालिया महीनों में طویل فاصلے کی

0: ये हमलों में शिद्दत पैदा की, जिनमें शहरी और सन्नती बुनियादी ढांचे समेत तवानाई, नकलो हमल और बंदरगाहों नीज बहिरास्वत में मौजूद बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है।
1: न्यूयॉर्क की रियासती गवर्नर कैथी हुचल ने खसरा के तेजी से फैलते हुए केसों के बायस रियासत भर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है, खास तौर पर उन देही इलाकों में जहां वैक्सीनेशन की शरह कम है। बढ़ते हुए वाकयात ने हुकाम को मुतहरिक कर दिया है। जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक न्यूयॉर्क में इस साल सामने आने वाले 108 केसों का एक बड़ा हिस्सा जुलाई के वक्त से अब तक रिकॉर्ड किया गया है। हंगामी सूरत हाल के दायरे कार में इंसदादी इकदाम को भी वसअत दी गई है। लिए गए नए फैसलों के तहत दवा फरोशों को 2 साल की उम्र से बच्चों को वैक्सीन लगाने का इख्तियार दे दिया गया है, जबकि नर्सों के लिए मुशतबा केसेस में बराह रास्त टेस्ट की दरख्वास्त करने का रास्ता भी खोल दिया गया है। अगरचे रियासत की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हमसाया रियासत पेंसिल्वेनिया में हालात इससे भी ज़्यादा संगीन हैं। पेंसिल्वेनिया में केसेस की तादाद 1,000 से तजावज़ कर चुकी है और 5 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि इस साल अमरीका भर में रिपोर्ट होने वाले तकरीबन 3,900 केसों के साथ मुल्क पिछले 35 सालों में खसरा की बदतरीन वबा का सामना कर रहा है।
0: अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका रूस में फेफड़ों की वबा के मुश्तबा केस की निगरानी कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन रूस में रिपोर्ट होने वाले फेफड़ों की वबा के एक मुश्तबा मोहलिक केस के करीब से निगरानी कर रहा है और मास्को को मदद की फराहमी पर तैयार है। ट्रंप ने पीर के रोज़ व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगु में कहा है कि हम इस मामले पर बगौर निगाह रखे हुए हैं, हमें हाल ही में इसका इल्म हुआ है। ट्रंप ने इस मौत को रूस के लिए एक बड़ा मसला करार देते हुए कहा है कि बरसों पहले निमोनिया का इलाज ज़्यादा आसान था और जरासीम और बैक्टीरिया ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन हम इनकी मदद के लिए तैयार हैं। जो भी इस तरह के मसले का सामना कर रहा हो, हम हमेशा इसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी तस्दीक की है कि वाशिंगटन इन पेशरफ्तों पर बगौर निगाह रखे हुए है। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई। और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं चुचुक बिजोल और गाया है हादिसे ने।